0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

नहीं जाननी के गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वरदीना मातु पुत्र हित जोत पतीना मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना।

मुख दशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि की नौ लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड चढ़ विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डारयो। नाम गणेश नाम गणेश नाम गणेश शंभू तब कीने प्रथम पूज्य

सोच र समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरूको लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्राली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमंगलम मा सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: सर्वमंगलम। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स।

0: झूले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम पठात मो जोटी जोटी
1: अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: 0948.
1: Stay tuned. In a few moments, new program.
2: Man or lady can
3: hide. If you ask your English,
4: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा।
5: कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
4: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्वों को संयोजन ले बने को यो लैक्सेटिव ग्रैन्युल्स ले अब मेरो पेटलाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस संग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि। मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल पेट स्वस्थ जीवन सरल। एसआर लैक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
3: सम्पर्क 9808300007।
4: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस
5: हिमाली दृश्यको अवलोकन सँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनको लागि स्वच्छ अनि रमणीय स्थान
4: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: Four, eight.

0: ಗೋಯಲ್ ಚುಚ್ಚೆ ಪಾಠ.
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सुतीबाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: FM AJ 104.8 megahertz.

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।
1: दीजिए बहनों और भाइयों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी हाजिर है लेकर गीतमाला की छाओं में। इसमें 1965 की सुरीली यादों का दूसरा हिस्सा भी पेश होगा और फिर 1966 का पहला भाग भी होगा। तो कहिए शुरू करें। अरे मगर आप इतने सीरियस क्यों हैं भाई, जरा अपनी किसी भी प्यारी टूथपेस्ट को याद करके मुस्कुराइए ना। वाह भाई क्या स्माइल।

ये तबस्सुम तो खैर उस साल छांव में रह गया था, अब आप सालाना संगीत सीढ़ी की झलकों वाली चढ़ान में बढ़िए आगे, यानी अब कदम रखिए वार्षिक पायदान नंबर

ये गीत फिल्म तीन देवियां की एक देवी से जुड़ा हुआ था और हर देवी के आने से पहले मेरी ही बैकग्राउंड कमेंट्री आती थी जी हाँ, और मेरी आवाज टुड़ुक टुड़ुक कहकर हर देवी का स्वागत करती थी। शुक्र है मेरी सिर्फ आवाज ही थी उस फिल्म में, वरना जहां देवानंद हो भाई वहां मेरा चेहरा कौन बर्दाश्त करता है ना। खैर चलिए अगली देवी के लिए पायदान नंबर 13 पर फिर से टुड़ुक।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो हो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: और नंबर 12 वाले गीत में उस साल थे दो बड़े कॉमेडियंस जौहर एंड महमूद,

0: भाई बड़े जॉली थे ये दोनों, हंसते हंसाते सितारे, और मुझे इनके साथ रेडियो प्रोग्राम करने में भी बड़ा मजा आया करता था। अच्छा जरा सुनिए कि मेरे एक इंटरव्यू में जौहर साहब ने महमूद भाई की कैसी तिरछी तारीफ की थी।
1: देखिए साहब, महमूद शराब नहीं पीता, खुदा से डरता है और गरीब परवरी का उसे बहुत शौक है। अपने भाइयों और बहनों को बड़ी फराख दिली से रुपए देता है, मगर वो इसलिए कि वो लोग बाहर जाकर किसी के लिए कामयाब फिल्म न बना सकें, बल्कि खुद महमूद के लिए फ्लॉप फिल्में बनाते रहे। वैसे फिल्मी हलकों में तो बहुत खुश नजर आता है, मगर रेस कोर्स में जरा उस पर हमेशा कुछ घबराहट और परेशानी सी नजर आती है।
2: अच्छा,
1: कोशिश तो बेचारा यही हमेशा करता है कि अपने कीमती और अजीब और गरीब लिबास से घोड़ों का मालिक लगे, मगर देखने वाले उसे हमेशा कोई रिटायर्ड जॉकी ही समझते।
0: अच्छा भाई चलिए अब काम पे लौट आए हैं। बहनों भाइयों, मेरे हिसाब से उस साल की वार्षिक संगीत सीढ़ी पर करीब 4 गीत ऐसे थे जो टॉप गीत नंबर 1 बनने के काबिल थे, लेकिन किसी न किसी वजह से पॉपुलैरिटी की गिनती में जरा नीचे रह गए। उनमें से एक था ये।

0: राज।
1: लेकिन देखिए बहनों भाइयों, वक्त ही के चाहने पर वक्त ही का एक बड़ा ही जोरदार गीत उन दिनों हिट नहीं हुआ, छांव में रह गया, मगर वक्त गुजरते गुजरते वो बन गया हमारे प्यारे मन्ना दा साहब का गाया हुआ बड़ा ही हर दिल अजीज गीत।

भाई कितना अच्छा होता अगर ऐसा अमर प्रेम हर मियां बीवी के बीच उम्र भर चलता रहता, तो फिर कभी झगड़े की नौबत ही ना आती और न डाइवोर्स की नौबत आती। हाँ, पति पत्नी अगर किसी वजह से एक दूजे से दूर भी हो जाते तो बस फिर से लौट आने के लिए।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। खैर बहनों भाइयों, मैंने आपको बताया था कि जब कई बड़े सीनियर संगीतकार एक डेलीगेशन के रूप में गीतमाला के स्पॉन्सर्स से और मुझसे मिले और वो लोग पूरी जांच पड़ताल के बाद मान गए कि गीतमाला की लिस्टें बिल्कुल सही और सच्ची होती हैं, उनमें कोई हेरा फेरी नहीं होती, तो हमने भी तय किया कि उन गुरुजनों का दिल रखने के लिए हम कुछ जरूर करेंगे। तो एक काम हमने ये तय किया कि कुछ महीनों तक हम संगीत सीढ़ी और पायदानों का सिलसिला तो बिल्कुल उसी तरह चलाएंगे, लेकिन हफ्तावार प्रोग्रामों में पायदानों के 16 से लेकर 1 वाले नंबर जो थे वो नहीं अनाउंस करेंगे। मगर साहब, कुछ अरसे के बाद ये तरीका नए सुनने वालों को चक्कर में डालने लगा, इसलिए मैंने राय ये दी कि चूंकि वो सभी सीनियर शिकायती संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री के थे ना, तो क्यों ना हम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को हर हफ्ते जज के रूप में इनवाइट करें, ताकि वो गीतमाला की हर लिस्ट जांचें, उन पर सिग्नेचर करें और हम फिल्म इंडस्ट्री के पूरे सहयोग, पूरे कोऑपरेशन के साथ पायदानों के नंबर अनाउंस करना फिर से शुरू कर दें। तो ये बात इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इम्पा के लोग मान गए और एक के बाद एक गीतमाला के चुनाव के जज के रूप में आए कौन भाई, अभी बताता हूँ आपको। पहले आइए एक और गजब के छांव वाले गीत का दिया जलाएं।

छाओ में छुपी हुई ये धुन भी एक ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर की थी, चित्रगुप्त, जिनके सुरों का उजाला उन दिनों कई फिल्मों में फैला। खैर साहब, अब ये सुनिए कि गीतमाला के क्रम के सिलेक्शन के जज की हैसियत से सबसे पहले आए मशहूर प्रोड्यूसर श्री जी पी सिप्पी, जिन्होंने आकर एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया साहब कि देखिए, कई अच्छे गीत शायद इसलिए गीतमाला में दाखिल नहीं हो पाते क्योंकि उनसे पहले आए हुए कई सुपरहिट गीत हफ्तावार पायदानों पर आकर ऐसे जम जाते हैं कि फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। तो आप ऐसा कीजिए कि गीत चाहे कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, अब से उसकी एक लिमिट रख दीजिए, जैसे 18 हफ्ते, और अगर कोई गीत 18 हफ्तों तक बच जाए तो उसे रिटायर कर दीजिए। तो भाई, हमने शुरू कर दिया ये तरीका जिसका जिक्र आप अनिल भार्गव की किताब गीतमाला का सुरीला सफर में भी पाएंगे। बस गीत जैसे ही 18वीं बार गीतमाला में बजता तो हम उसे सरताज गीत का टाइटल देकर रिटायर करते हुए उसके लिए ऐसा सा बिगुल बजाते। और रिटायर होने तक जो मार्क्स उस गीत ने पाए होते, वही मार्क्स एन्यूअल प्रोग्राम में गिने जाते। बहरहाल, गिनती के मुताबिक उस साल नंबर 8 पर था फिल्म जानवर का गीत।

और साहब उस साल की पायदान नंबर 6 ने हमें पहुंचा दिया हिमालय की गोद में और हमें सुनाया एक और लाजवाब गीत जो होना चाहिए था पायदान नंबर 1 के आसपास।

0: बहनों और भाइयों, पिछले वॉल्यूम में हमने सिने म्यूजिक डायरेक्टर्स की ओर से बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर चुने जाने वाले इसी फिल्म के गीत मैं तो एक ख्वाब हूं के सिलसिले में आपको कई मशहूर फिल्मी हस्तियों की आवाजें सुनवाई थी, याद है ना आपको। आज सुनिए इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स यानी कल्याण जी आनंद जी के बारे में एक और फंक्शन में कही हुई अदाकारी के शहंशाह दिलीप कुमार की बात। दिलीप साहब यानी यूसुफ खान साहब की उर्दू जबान जरा गाढ़ी हुआ करती है बहनों भाइयों, मगर उनकी बात हमेशा शानदार होती है। सुनिए
1: कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, हम सिर्फ तो दोस्त हैं, आपके भाई हैं, हम खुश हैं, लेकिन हमारे मुल्क का कल्चर जो है वो आपका एहसान मंद है, क्योंकि उस कल्चर को आपने बरकरार रखने की कोशिश की है। इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं और बहुत से अजीम शख्सियतें जो आजकल बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुकी हैं मौसीकी के, वो इनके करीब इनकी महफिल के मुसाहिब बन कर रहे हैं। तो एक तरह की इन दोनों भाइयों ने एक खूबसूरत सल्तनत कायम की थी इंसानियत की। मैं अपने आप को इस बात में खुशनसीब समझता हूं कि उस सल्तनत और उस दरबार में एक मुसाहिब बनकर बैठने का एजाज मुझको भी मिला है।
0: अच्छा, उसी साल सालाना पायदान नंबर 5 पर था फिल्म खानदान का,

पर अब साहब 1965 की ऊपर वाली तीन टॉप पायदानों की झलकों से पहले मैं आपको फिर एक बार ले चलूंगा गीत माला की छांव में, और यहां हमारे सामने होगा महान संगीतकार अनिल बिस्वास का आखिरी जलवा।

0: ये आवाज थी अनिल बिस्वास की सुरीली पत्नी मीना कपूर की, और फिल्म थी छोटी छोटी बातें। मगर एक और बड़ी बात उस फिल्म की ये थी कि उसे डायरेक्ट किया था फिल्मी दुनिया के एक अजीम अदाकार मोतीलाल ने, जिनकी नेचुरल एक्टिंग की बुलंदी तक बहनों भाइयों मेरा ख्याल है बहुत कम एक्टर आज तक पहुंच पाए हैं।
1: FM AJ 104.8 MHz।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सुतीबाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: मंगलम अब सबै को मंगलम अब घर घर में मंगलम सबै को इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम।
1: जय श्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल, मंगलम सोनम चामल, मंगलम सोना स्टीम चामल, स्वाद र संतुष्टि को लागी।

पंचम अध्याय भगवान गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान गणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर भगवान का आगमन हुआ था। भगवान शनि ने सोचा, दीर्घ काल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनि देव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेका अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उसी समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्री हरि और भगवान ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। भगवान ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोगों का साक्षी धर्म मूर्ति मान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। माता पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए थे और उनके अनेक शिवगण अनेक सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थीं। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थीं। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनिदेव अत्यंत विनर्म सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मूंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुख मंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनि देव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहाँ के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वह किसी भी प्रकार पूर्ण होना चाहिए। भगवान शनि देव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। भगवान शनि देव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि भगवान शनि देव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वती नाथ मुस्कुराए और बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिराज नंदनी के पास जाओ, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा है। भगवान शनि देव ने कहा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहां भेजने की व्यवस्था करिए। प्रभु, भगवान शंकर ने नंदी देव को संकेत दिया तो भगवान नंदी ने भगवान शनि देव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनिश्चर, समाज की शांति भंग मत करो, चुपचाप मंद गति से माता पार्वती जी के भवन पर जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से ना जाना वहां। शनिश्चर मन ही मन हंसे, सोचा, यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे यह स्थान तो बतलाइए जहाँ जग जननी का भवन विद्यमान है।
नंदीश्वर हंसे और फिर बोले, शनि देव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिर कर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर ही लेते हो। तब माता जगत जननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि से ओझल कैसे हो सकता है? भगवान शनि देव ने हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है नंदीश्वर। मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दे तो मैं वहां पहुंचूं। भगवान नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है। देखो वहां वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। विशालाक्ष का शनिश्चर को रोकना। भगवान शनिश्चर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चल पड़े। वास्तव में वहां एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रमथ गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। भगवान शनि देव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को ना देख सके। शनि देव को आते देखकर भगवान विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। भगवान शनि देव ने कहा कि शिवजी के ही समान रूप शील बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है तो दूर से ही बोले, हे शिवजी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनि गणों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जग जननी माता पार्वती जी के पास जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। भगवान शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और ना शिवजी का ही सेवक हूँ। जो देवताओं का दास विष्णु जी का पार्षद या शिव का किंकर हो उससे कहो। शनि देव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए? कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक और डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो भगवान शिवजी और वैकुंठनाथ भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा।

ऐसा निश्चय कर शनैश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं आपके पद प्राकर्म और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब मेरे अपराध को आप क्षमा कर दे, अन्यथा मेरे यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न होइए नाथ। भगवान विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। भगवान शनैश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था, साथ ही जग जननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए और माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनि देव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप माता जगजननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे ना चले आना। जब तक मैं ना लौटूं, तब तक यहाँ खड़े मिलना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहो प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? भगवान विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगजननी को प्रणाम कर कर बोले, माता आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। माता पार्वती की आज्ञा से शनि देव का अंतःपुर में प्रवेश वर्णन। माता पार्वती जी ने कहा, उन्हें आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाले श्रेष्ठ अनुचर हैं। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनि देव भीतर पहुंचे और जग जननी माता उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अति उच्च रत्नमणि जटे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थीं। पांच प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थी तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता ने अपनी देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंगन आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जटित श्रृंखला, चरणों में नुपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशि मई वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थीं। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचा किया रहने के कारण वह कुछ भी ना देख सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, शनैश्चर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। भगवान शनि देव ने कहा, हे जगजननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। माता उमा ने कहा, वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं।
और अब जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। भगवान शनिश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्मा प्रभृति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहदारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देते हैं। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंच जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिरक योनियों में डालता है, वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में भी कारण है, वही जीव को चिंता में डालता है और वही सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, सनातन एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही प्राप्ति होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक गर्हित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना पड़ता है। हे शिव वल्लभ, यह सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वस्तु

किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना पड़ता है। हे शिव वल्लभ, यह सब तो मैंने प्राकथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वस्तुतः

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति।
3: छठा अध्याय, भगवान शनि को पत्नी द्वारा शाप की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त होता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है। भगवान शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्वी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब ऋतु स्नाता हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामय लग रहे थे। उनके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का कार्य किया था। उस समय उनका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला था। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसीलिए उनके आगमन पर भी मैंने ध्यान ना दिया, किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामिन, मेरी और देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी और कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग ना हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उनका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उन्होंने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह उठी, अरे मूढ़, तूने मेरी और देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उनका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इन्होंने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया। वस्तुतः यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो शाप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया, देवी प्राणप्रिय, मैं ध्यान अवस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया और जब शांत हो गई तब उन्हें काम्य प्रदान कर उनसे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति ना रह गई थी जो अपने को वह नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उनका पतिव्रत धर्म अशक्त हो गया। उन्होंने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए। किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी की भी और आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से ना जाने किसका अहित हो जाए। लोक कल्याणार्थ ही मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण हे जगत जननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। भगवान शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर माता पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनि देव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर चुप हो गए। यह देखकर शौनक जी ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही सक्षम हैं। कृपया इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। माता पार्वती जी ने शनि देव को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले, शौनक जी, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोली, ग्रहेश्वर, आपको जो शाप मिला है उसका नाश तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख सकते हो। शनेश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसको नहीं देखूं? यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, परंतु ना देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनि देव ने धर्म को साक्षी करके माता पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु माता पार्वती जी की ओर ना देखना ही उचित होगा ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, होठ व तालु का शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। शनि देव को उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक देखी थी, तथापि शाप का फल ना मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। माता पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। माता देवी गिरिराज नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गईं और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं, वे उधर दौड़ पड़ीं। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान स्तंभित सी हुई सखियों ने माता पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम ना निकला।
4: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़ पड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि देव ने जो ही बालक के दर्शन किए त्यों ही उनका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारे शनिश्चर दीनहीन हुए सिर झुकाए वहीं खड़े हैं। नंदी देव की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। भगवान श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुघड़ काय हतिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उन्हें देखते ही गरुड़ से उतरे और सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दशों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हतिनी और उनके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हतिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाघवाणों का प्रहार करने लगी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उनके शिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब व्रतान सत्य सत्य बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी, शांत हो जाओ, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए यह मारे गए हैं उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हतिनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, माता पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनि देव उनके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उनका मस्तक छिन्न भिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फल स्वरूप जग जननी पुत्र

वह सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी शनैश्चर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अमर और अजय हैं। उनका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहते हैं। बेचारे एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाते। हतिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर आप मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी ना देख कर आपको शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ मांग लो वही दे दूंगा। हतिनी को इस तर्क में सत्यता ना लगी। उन्होंने कहा, देव आपने ही उसे मारा है तो आप ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि आप किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का ही आपको क्या अधिकार था? कहते हैं कि देवगण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी आप इसी कार्य के लिए ले जा रहे होंगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन प्रदान कर सके। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हतिनी ने हट किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती जी के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृतक की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम धैर्य रखो, मैं अभी किसी जीव को लाकर इसे पुनर्जीवित करता हूँ। गजराज को पुनः जीवन दान देना। हतिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही दूर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लाए। वह मस्तक गजराज के धड़ पर जोड़ दिया और अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिए, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर सोते से जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगे। प्रभु, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उनका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। हे नाथ, आप चतुर्भुज कीटधारी शंख चक्र आदि से समन्वित समस्त दिव्य आयुधों से सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छिन्न भिन्न किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाना तो निश्चय ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का कारण होता है, उससे निश्चय ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती। किंतु अब पुनर्जीवन होने से मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, इन्हीं के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई है। हतिनी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु, उस शोक ग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई हो उसे क्षमा करें। उस समय आवेश में आकर मैं आप परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उन्हें भी मीठी वाणी से परितुष्ट किया और गरुड़ पर चढ़कर गजराज के कटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग के समान चल दिए और शीघ्र ही जग जननी माता पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।